सुप्रभात एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय

0: सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओं, आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे जैविक कीटनाशक के उपयोग बनाने की विधि और लाभ विषय पर। जानकारी दे रहे हैं अनिमेश कुमार बख्शी।

कृषक मित्रों जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बातें करेंगे जैविक कीटनाशी के उपयोग और बनाने की विधि तथा इसके लाभ के विषयों पर। कृषक मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैविक कीटनाशक प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधों के अर्क, नीम, गोमूत्र और छाछ से तैयार किए जाते हैं। यह बिना मिट्टी को नुकसान पहुंचाए फसलों को कीटों और बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। आइए जानते हैं कि जैविक कीटनाशक बनाने की विधि क्या है। इसके लिए 10 प्रकार की पत्तियां होनी चाहिए, जिसमें नीम, करंज, पपीता, सीताफल, अरंडी, निर्गुंडी, कनेर, मदार, अमरुद और तुलसी या गिलोय में से कोई भी 10 तरह की पत्तियां लेनी है और लगभग 5 किलोग्राम मात्रा के हिसाब से लेनी है। 1 किलो हरी मिर्च और 1 किलो लहसुन का पेस्ट भी बना लेना है। 5 लीटर ताजा गोमूत्र और 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम भी होना चाहिए। आइए जानते हैं कि इसके बनाने की प्रक्रिया क्या क्या है। सभी 10 प्रकार की पत्तियों को बारीक काट लें। 200 लीटर पानी से भरे ड्रम में कटी हुई पत्तियां, लहसुन, मिर्च का पेस्ट और गोमूत्र डाल दें। ड्रम को किसी सूती कपड़े या ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर दें। इस मिश्रण को 40 दिनों तक छांव में सड़ने दें। इस दौरान इसे रोजाना सुबह शाम किसी लकड़ी से एक बार जरूर हिलाएं। 40 दिन बाद आपका जैविक कीटनाशक तैयार हो जाएगा। इसे छान कर किसी बोतल में रख लें। और अब इसका उपयोग कैसे करें ये भी जान लेते हैं। 15 लीटर पानी के स्प्रे पंप में 250 से 300 मिलीलीटर यह तैयार घोल को मिला लेना चाहिए और फिर फसलों पर छिड़काव करना चाहिए। इसके लाभ क्या क्या हैं इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। सबसे पहला लाभ है कि यह सुरक्षित और विष मुक्त है, यानी इनके प्रयोग से उत्पादित फल और सब्जियां स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित होती हैं और आप छिड़काव के तुरंत बाद भी फसल तोड़ सकते हैं। दूसरा है पर्यावरण के अनुकूल, यानी ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते और मिट्टी के मित्र केचुआ या अन्य अच्छे जीवाणुओं को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तीसरा है उत्पादन लागत में कमी, इन्हें घर पर आसानी से उपलब्ध चीजों से बनाया जा सकता है, जिससे बाजार में मिलने वाले महंगे रसायनों पर होने वाला खर्च बचता है। और चौथा है विभिन्न रोगों से बचाव, यानी ये इल्ली यानी कीड़े, रस चूसने वाले कीड़े और फंगस यानी फफूंदी को नष्ट करने में बेहद कारगर हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जैविक कीटनाशी का उपयोग आप सभी किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा कीटनाशक है जो आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है, आपके स्वास्थ्य को खराब नहीं करता है। क्योंकि यह प्राकृतिक चीजों से मिलकर बना होता है तो इसलिए यह सिर्फ उन पर वार करता है जो आपके फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी उन कीड़ों को यह मारता है जहां पर आपका नुकसान हो रहा होता है, लेकिन आप किसान भाई बहनों को यह नुकसान जरा भी नहीं करता। जैविक कीटनाशी के उपयोग, बनाने की विधि और लाभ, इन्हीं विषयों पर बातें हो रही थी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। आप सभी किसान भाई बहनों को पुनः एक बार जोहार। आपका दिन शुभ हो।

आज का चिंतन, मेहनत और धैर्य सफलता की असली ताकत हैं। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6:16 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। अब आइए सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में भक्ति रचनाएं हरिओम शरण के स्वर में।

हरि ओम शरण के गाय इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्री राम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर

भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

आपके साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का

0: फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। अब आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 7:20 पर लोकगीत प्रस्तुत किया जाएगा और 7:35 पर कार्यक्रम सुरांजलि में आज आप सुन सकते हैं नजरुल गीती। 7:50 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण समय होगा सुबह के 8:30 पर। ये रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 9 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार के रचे गाने। 9:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 11 बजे हिंदी में समाचार और दोपहर 12 बजे एक बार फिर से हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकते हैं। 11:05 पर हम आपके साथ होंगे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर लेकर और दोपहर 12:05 का समय होगा भावगीत का। 12:30 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज़, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और अपराह्न 3:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 3:45 का हमारा समय होता है लोकगीतों का। संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा और 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। 5:30 का समय होता है कल कारखाने का। संध्या 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम लेकर हम आपके साथ होंगे। 6:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहाँ से आप सुन सकते हैं ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। 7 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा और 7:10 पर जिले में आज कल का प्रसारण होगा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट नाइट और 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 बजे हेलो आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। और आइए अब सुनवाते हैं सुगम संगीत में गजलें। फनकार हैं जगजीत सिंह, सुनवा रहे हैं ये गजल। मतला है, किसको आती है मसीहा ही, किसे आवाज़ दूँ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में गजलें, फनकार हैं जगजीत सिंह। अब आइए सुनवाते हैं अगली गजल। मतला है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।

अभी आपने सुना जगज सिंह और चित्रा सिंह को, और इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप आनंद लेंगे भोजपुरी गीत का शोभा रानी और साथियों से।

शोभा रानी के गाए इस भोजपुरी लोकगीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे इंद्राणी सेन का गाया नजरूल गीत।

कार्यक्रम सुरांजलि में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे इंद्राणी सेन का गाया नजरुल गीति। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और अब लीजिए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में आप सुनेंगे गॉल ब्लैडर में पथरी, कारण और बचाव। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे गॉल ब्लैडर में पथरी के बारे में। ये पथरी होता कैसे है और इसे फिर हम कैसे बच सकते हैं, इन बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सर्जन डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर में जो पथरी होता है उसके होने के मुख्य कारण क्या होते हैं।
1: सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर होता क्या है।
0: जी,
1: लीवर के नीचे पित्त की थैली होती है जिसमें लीवर से निकले हुए बाइल यानी पित्त जमा होते हैं। वो उस पित्त का उपयोग हम लोग अपने जब खाना खाते हैं तो पार्टिकुलरली तैलीय पदार्थ जो है उसको पचाने में काम आता है। पित्त की थैली में जो पित्त जमा होते

0: उसका कंपोजिशन यदि बदल जाए, जैसे उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए या पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाए या इन्फेक्शन हो जाए, ये तीन मुख्य कारण हैं। इन्हीं तीनों कारणों से पित्त की थैली में पथरी हो जाता है।
1: कैसे किसी को पता चले कि उसके पेट में पथरी है?
0: मरीज को पित्त की थैली के पथरी होने का अंदाजा नहीं लग सकता, वो पता नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब उसको पित्त की थैली में पथरी होता है तब उसको पेट के दाहिने और ऊपर ऊपरी भाग में उसको दर्द होता है
1: जी।
0: वो दर्द आगे बढ़ करके उल्टियां कराने लगता है और तब तक उपचार यदि नहीं किया गया तो उसको बुखार आ जाता है। तो ये तीन प्रमुख लक्षण है, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना, उल्टियां होना और बुखार आना।
1: कोई पेशेंट अगर पेट में गॉल ब्लैडर की पथरी अगर उसको है तो बचने के क्या उपाय हो सकते हैं?
0: आप अपने खान पान में संयम रखें
1: जी,
0: तैलीय पदार्थ कम खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें। पित्त की नली में लीवर को जो डैमेज करने वाले जो टॉक्सिक हैं, पर्टिकुलरली प्रिजर्वेटिव फूड, प्रिजर्वेटिव जंक फूड, ये सब ना खाएं, उससे होने वाले इन्फेक्शन से पित्त की थैली में पथरी होता है।
1: अगर कोई पेशेंट इस बीमारी को नजरअंदाज करे काफी दिनों तक तो ये कितना खतरनाक हो सकता है?
0: पित्त की थैली की पथरी का नजरअंदाज करना बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है अब तक, और ये जानलेवा तक साबित हो सकता है। शुरुआती दौर में यदि आपने एक साल दो साल यदि नेग्लेक्ट किया तो वो पित्त की थैली में पत्थर की संख्या बढ़ते जाएगी, पत्थर का साइज बढ़ते जाएगा, इन्फेक्शन बार बार होते जाएगा, और यहाँ तक कि पित्त की थैली को परफोरेट करके वो पेट के अंदर भी जा सकता है। उसके बाद भी यदि आपने नेग्लेक्ट किया, देखा गया है कि 10 साल यदि नेग्लेक्ट कर दिया गया तो 90% केस में ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसका इलाज असंभव हो जाता है।
1: आप हमारे श्रोताओं को अंत में क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो इस बीमारी से बचे रहें?
0: श्रोताओं, पित्त की थैली में होने वाले पत्थर से बचाव के लिए मुख्य कारण है आप खान पान में संयम रखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स की मात्रा को बैलेंस करके रखें, ज्यादा ना खाएं, पर्टिकुलरली तैलीय पदार्थ कम खाएं, जंक फूड कम खाएं, रोड के किनारे बनने वाले ठेला पर जो बिकने वाले सामान की संख्या खुले में जो सामान मिलता है, इन्फेक्टेड मटेरियल जो होते हैं उसके वैसे सामानों का खान पान कम करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। बहुत देर तक भूखे ना रहें, थोड़े थोड़े इंटरवल पर थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। इस तरह से आप पित्त की थैली से में होने वाले पत्थर से बचाव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने उपयोगी जानकारियां दी, उम्मीद है हमारे श्रोता आपके द्वारा बताए गए बातों पर जरूर ध्यान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। गॉल ब्लडर में पथरी कारण और बचाव विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मनोज कुमार और इनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों

0: को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल

0: टोल टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन

0: ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुख्य पृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट

0: से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस पर क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और संथाल विद्रोह के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आज कई जगह होंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड की 3,245 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आज से हो रहा है शुरू। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का करेंगे सत्यापन। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4 दिनों तक मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय रहने का जताया अनुमान। गरज चमक और वज्रपात की संभावना। तापमान में आएगी गिरावट। और चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 18 वॉलीबॉल टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में दुमका के अमित कुमार का किया गया चयन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में हर साल 30 जून को आदिवासी क्रांति के नायक

0: सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो जानो के बलिदान को याद करने के लिए हूल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानो और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक रिपोर्ट।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में आज हर वर्ष की तरह हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था, जिसे जनजातीय इतिहास के कई अध्येता भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस आंदोलन में करीब 20,000 लोगों की सभा के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें संथालों के साथ कई अन्य स्थानीय समुदायों ने भी भागीदारी निभाई। तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से लैस क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में कल झारखंड में 3,245 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। श्री गडकरी ने टिकाव और कुशल राजमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए रखरखाव कार्यों के समय पर निष्पादन, उच्चतम गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन और आधुनिक निर्माण तकनीकों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR आज से शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। इधर रामगढ़ जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की विस्तृत जानकारी दी।
1: झारखंड के
2: रामगढ़ जिला में जो हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 की प्रक्रिया है, इसमें हाउस टू हाउस विजिट BLO के द्वारा किया जाएगा। हाउस टू हाउस विजिट जो होगी 30 जून 2026 से लेकर के 29 जुलाई 2026 तक, अर्थात एक माह तक किया जाएगा। इसमें हमारे BLO के द्वारा गणना पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन सभी वोटर्स को किया जाएगा और के बारे में वोटर्स को जागरूक किया जाएगा।
0: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने VBG रामजी योजना में केंद्र और राज्य के बीच 60% और 40% की हिस्सेदारी के निर्णय पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन कहा कि इससे झारखंड पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मंत्री ने केंद्र से महात्मा गांधी के नाम से एक नई जनहित की योजना शुरू करने की भी मांग की। कल्याण विभाग की ओर से कल रांची के 10 विद्यालयों के 693 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी गई। मौके पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि हर छात्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश भाजपा के महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने झामुमो की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाने पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो और उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस और राजद का राजनीतिक इतिहास घपले घोटालों से भरा है।
3: जमकर मुद्रा मोचन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जो ज्ञान की डींगे हांक रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। CGL का पेपर लिख होता है, उत्पाद सिपाही का पेपर लिख होता है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। उस पे

0: की मांग की। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
0: झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित +2 उच्च विद्यालय के शारीरिक शिक्षा के शिक्षक अमित कुमार का चयन चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर-18 वॉलीबॉल टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में किया गया है। उनकी इस उपलब्धि पर झारखंड वॉलीबॉल संघ, झारखंड शिक्षा परियोजना और विभिन्न संगठनों ने उन्हें बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य के 1042 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने आज से झारखंड में SIR शुरू होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राज्य के सभी जिलों में भूमि सर्वे पूरा करने की समय सीमा तय किए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। दैनिक भास्कर ने राज्य के नए सूचना आयुक्तों का कल लोक भवन में शपथ ग्रहण होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार किए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस पर क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और संथाल विद्रोह के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आज कई जगह होंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड की 3245 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आज से शुरू हो रहा है। BLO घर घर जाकर मतदाता सूची का करेंगे सत्यापन। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4 दिनों तक मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय रहने का जताया अनुमान। गरज चमक और वज्रपात की संभावना, तापमान में आएगी गिरावट। और चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर-18 वॉलीबॉल टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में दुमका के अमित कुमार का किया गया चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर।

श्रोताओं, सुबह का वक्त अपनी आत्मा से जुड़ने का वक्त होता है, उस परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया कहने का वक्त होता है जिसने हमें ये अनमोल जीवन दिया है। और जब बात खुदा की इबादत की हो, सूफियाना रंग की हो, तो संगीत से बेहतर कोई जरिया नहीं होता। और कहते हैं कि जब बंदा अपने ईश्वर या अपने प्रियतम की याद में खो जाता है तो उसे माला के मोतियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी तो हर सांस ही एक दुआ बन जाती है, एक सिमरन बन जाती है।

दोस्तों, सुबह के इस ताज़ी हवा में जब दिल किसी अपने को याद करता है तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। प्यार का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं। जैसे दिल के बिना धड़कन अधूरी है, वैसे ही चाहत के बिना जीवन।

0: दोस्तों, आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपने सुना फिल्म कोयला और अधिकार के गाने। आवाजें कविता कृष्णमूर्ति और किशोर कुमार की थी। गीतकार थे इंदिवर, संगीत निर्देशन राजेश रोशन और मप्पी लहरी का था। इस गाने के साथ ही
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव प्रस्तुत करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्ष

अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। अमरीका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। होर्मूज जलडमरू मध्य से वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कार्यकाल में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाते हैं सुरंजना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज।
2: ज्ञान विज्ञान,
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की

0: रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं, उनके लिए खतरा और भी ज्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते, फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं, 2020 में 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी बढ़ी है।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

दोस्तों, महबूब साहब ने इश्क के उस दर्द को भी पन्नों पर उतारा जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। जब फिल्म बॉम्बे में हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति ने सुर साधे तो महबूब जी के

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुरंजना में आपने सुना फिल्म तक्षक बॉम्बे और हम दिल दे चुके सनम के गाने। आवाज़ें थी सुजाता त्रिवेदी, कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन और मोहम्मद सलामत के। गीतकार थे ए महबूब और संगीत निर्देशन था ए आर रहमान और इस्माइल दरबार का। आज के कार्यक्रम सुरंजना में आपने सुना गीतकार महबूब की रचनाएं।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सुनेंगे पन्ना लाल घोष ने बांसुरी वादन, राग तोड़ी पर आधारित।

अभी आप सुन रहे थे राग तोड़ी पर आधारित बांसुरी वादन पन्ना लाल घोष से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और

0: पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। भारत ने वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप राहत कार्यों को तेज किया। मोरक्को, पराग्वे और ब्राजील फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीसा कुक को पद से हटाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

0: अदालत ने 5-4 मतों से ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि लीसा कुक को पद से हटाने से पहले उन्हें कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए था। अदालत ने माना कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद किसी भी अमरीकी राष्ट्रपति ने किसी गवर्नर को हटाने की कोशिश नहीं की थी। इस फैसले को फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि अदालत ने एक अन्य फैसले में राष्ट्रपति के अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने के अधिकार का दायरा बढ़ाया है। लीसा कुक ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज किया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल में नेशनल असेंबली ने विनियोग विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बालगे द्वारा पेश विधेयक बहुमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र में लागू कर नागरिकों के लाभ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में निजी विद्यालयों पर प्रगतिशील कर इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जो लोग खर्च उठा सकते हैं उन्हें उन लोगों की सहायता के लिए अधिक योगदान देना चाहिए जो वहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देश में 1/3 विद्यार्थी सामूहिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। मध्यम आय वाले लोगों के लिए राहत उपाय के अंतर्गत कर छूट सीमा बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि संवैधानिक निकायों के लिए बजट नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि मौजूदा सरकार की कार्यभार संभालने से पहले ही बजट सीमा तय कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट और कार्यक्रमों की घोषणा की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वेनेजुएला में भारतीय दूतावास ने बताया कि भारतीय सेना ने वहां एक अस्थायी फील्ड अस्पताल स्थापित किया है जहां भूकंप प्रभावित लोगों का उपचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सेना प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इससे पहले 28 जून को भारत ने शक्तिशाली भूकंपों से प्रभावित वेनेजुएला के लिए आपात सहायता सामग्री भी भेजी थी। भारत ने कहा है कि इस कठिन समय में वे वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी योजना है और ना ही कोई आर्थिक नीति, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार ना बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने संबोधन में ये बात कही। सम्मेलन का विषय था कानून के शासन की रक्षा, भारत और स्वीडन के अनुभव। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में विधि सम्मत शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा केवल शक्ति नहीं बल्कि अदालतों को सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के सिद्धांत पश्चिम से ली गई औपनिवेशिक शासन उपरांत अवधारणा नहीं है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सहित कई देशों में तापमान के नए रिकॉर्ड बने हैं। यूरोप में 19 करोड़ से अधिक लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करना पड़ रहा है।
3: इटली में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट वाले शहरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्मनी, चेक गणराज्य, पोलैंड और हंगरी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। फ्रांस और जर्मनी में ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पेरिस में भी हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 21 जून से यूरोप में 1,300 से अधिक मृत्यु भीषण गर्मी से हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियसिस ने कहा कि यूरोप अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जहां तापमान वैश्विक

0: औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अलका सिंह।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से मात दी। दो घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें पहले 1-1 से बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मोरक्को ने पेनल्टी में जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया। इससे पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में जापान पर 2-1 की जीत के बाद ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। गैब्रियल मार्टिनेली ने चोट के आखिरी क्षणों में विजयी गोल दागकर 5 बार के चैंपियन ब्राजील को राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में एक नई उपलब्धि दिलाई। एक दूसरे मुकाबले में पैराग्वे ने अतिरिक्त समय में 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को 4-3 से मात दी। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में ये जर्मनी की पहली हार है। इस जीत के साथ ही पैराग्वे विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। भारत ने वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप राहत कार्यों को तेज किया। और मोरक्को, पराग्वे और ब्राजील फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दूसरा आदमी, आपने सुना इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। रचनाकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत निर्देशन था राजेश रोशन का।

0: का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान

0: का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान
2: आते कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। गीतों भरे सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है।

हिना, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ थी, गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। अब आइए सुनवाते हैं अगला नगमा फिल्म नूरी से। नगमा निगार हैं जानिसार अख्तर, मौशिकी खय्याम की है आवाज़, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की हैं।

आपने चुन किया है आकाशवाणी जमशेदपुर और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म मन से। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, बोल समीर के हैं, धुन संजीव दर्शन का है।

और अब लीजिए सुनवाते हैं अगला गाना बेवफा फिल्म से। समीर के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

0: फिल्म राजा हिंदुस्तानी के इस गाने के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमरीका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण कर किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11:05 और 22 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

Skateboard. कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। हमारा और आपका साथ रहेगा पूरे 55 मिनट तक।

श्रोताओं, झारखंड की भूमि क्रांतिकारियों के वीर गाथाओं से भरी पड़ी है। सन 1855 में 30 जून के ही दिन झारखंड के जनजातीय समुदाय द्वारा हूल क्रांति के अमर शहीद महानायक सिदो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका गया था। चांद भैरो फूलो झानो ने भी इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। दमन और शोषण के खिलाफ उलगुलान का ये इतिहास आजादी की लड़ाई से पूर्व का है। 30 जून 1855 को अंग्रेजों के खिलाफ फूंका गया ये बिगुल भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम के रूप में जाना जाता है। श्रोताओं, आज 30 जून है और आज पूरे झारखंड में हूल दिवस मनाया जा रहा है। इसे हूल क्रांति या फिर संथाल विद्रोह भी कहते हैं। ये विद्रोह आदिवासियों की संघर्ष गाथा और उनके बलिदान को आजादी के लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले नायकों को याद करने का खास दिन है। हूल क्रांति के अमर वीरों के बलिदान को नमन।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे राजी फिल्म का गीत। गाने के बोल लिखे गुलजार ने और धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी की आज पुण्यतिथि है, उन्हें हम नमन करते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले एशियाई थे। इसके अलावा वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने तीन बार 1886, 1893 और 1906 में इसके अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। दादा भाई नौरोजी बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित और प्राकृतिक दर्शन के प्रोफेसर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। 1892 में उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लंदन के सेंट्रल फिंसबरी क्षेत्र से चुनाव जीता और हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने लंदन में भारतीयों के दृष्टिकोण को रखने के लिए 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वप्रथम प्रयास 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। दादा भाई नौरोजी को ड्रेन थ्योरी या धन का पलायन का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से उजागर किया था कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक संसाधनों और धन को ब्रिटेन ले जा रहा था, जिससे भारत में लगातार गरीबी बनी हुई थी।

मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन

यसुदास की आवाज में आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गाना। गाने के बोल लिखे इंदिवर ने और तर्ज बनाई उषा खन्ना ने।

साल 1938 में 30 जून का ही दिन था जब बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून किरदारों में शुमार सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर नजर आया था। उसके बाद सुपरमैन दुनिया भर के बच्चों का पसंदीदा किरदार बन गया। सुपरमैन को दो रचनाकारों ने मिलकर विकसित किया। ये किरदार अपनी असाधारण शक्तियों, न्यायप्रियता और मानवता की रक्षा के संकल्प के कारण पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। नीले परिधान, लाल कैप और सीने पर बने विशेष प्रतीक ने सुपरमैन को अलग पहचान दी। कॉमिक्स की दुनिया से शुरू हुआ सुपरमैन का सफर जल्द ही रेडियो, टेलीविजन, एनिमेशन और फिल्मों तक पहुंच गया। कई दशकों से ये चरित्र मनोरंजन का अहम हिस्सा बन चुका है। 30 जून का ये दिन कॉमिक्स इतिहास के उस महत्वपूर्ण क्षण की याद दिलाता है जब एक काल्पनिक पात्र ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की कल्पनाओं को नया आकार दिया।

तारा रंपम, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी महालक्ष्मी अय्यर, श्रवण सुरेश, शान और स्नेहा सुरेश की। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार विशाल शेखर।

श्रोताओं, कल्याण जी वीरजी शाह हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। वे भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक थे। गुजरात के कच्छ के कुंड रोडी में 30 जून 1928 को जन्मे कल्याण जी वीरजी शाह बचपन से ही संगीतकार बनने का सपना देखा करते थे। उन्होंने किसी उस्ताद से संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए और संगीतकार हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करने लगे। बतौर संगीतकार सबसे पहले वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में कल्याण जी को संगीत देने का मौका मिला। वर्ष 1960 में उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद जी को भी मुंबई बुला लिया। इसके बाद कल्याण जी ने आनंद जी के साथ मिलकर

फिल्मों में संगीत देना शुरू कर दिया। जब इस जोड़ी ने संगीत की दुनिया में कदम रखा तब बॉलीवुड में कई दिग्गज संगीतकारों का बोलबाला था। इस वजह से शुरुआत में दोनों भाइयों को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कल्याण जी आनंद जी ऐसे पहले संगीतकार थे जिन्होंने बॉलीवुड में क्ले वायलिन नाम से बिजली से चलने वाले वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया। मन डोले मेरा तन डोले इस गाने में बीन की आवाज निकालने के लिए क्ले वायलिन और हारमोनियम का इस्तेमाल किया गया। इस धुन ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। आइए सुनते इसी फिल्म का गाना।

नागिन फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज थी लता मंगेशकर की। गाने की बोल लिखी राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई हेमंत कुमार ने।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

श्रोताओं, अंतराल में जाने से पहले हम बात कर रहे थे संगीतकार कल्याण जी वीरजी शाह के बारे में। कल्याण जी वीरजी शाह का करियर नागिन फिल्म से हुआ था। इसके बाद उन्हें सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद कल्याण जी ने पोस्ट बॉक्स 999 और दिल भी तेरा हम भी तेरे जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया। समय बीतता गया और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के नाम से मशहूर कल्याण जी आनंद जी के गाने एक के बाद एक

यह आवाज थी मुकेश की। फिल्म का नाम था हिमालय की गोद में और गाने के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, जब जब फूल खिले का ये गाना कभी ना भूलने वाला गाना बन गया। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

आया तुमको हम पे प्यार आया प्यार आया ओ हमको

ना हंसना रोना नाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको तो।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले, फिल्म का गाना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं, काम को लेकर कल्याण जी आनंद जी का फिरोज खान के साथ भी एक गहरा रिश्ता रहा। फिरोज खान को संगीत की काफ़ी समझ थी और वे अरबी संगीत में बहुत दिलचस्पी रखते थे। कल्याण जी आनंद जी ने उनके साथ मिलकर कई हिट गाने दिए।

धर्मात्मा फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, आवाज थी किशोर कुमार की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कुर्बानी फिल्म का गाना। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। गाने के बोल के इंदिवर ने और धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का इन्यूमरेशन फेज सोमवार से शुरू हो चुका है। 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे प्रीफिल्ड इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और भरे हुए फॉर्म के साथ उनकी नवीनतम रंगीन फोटो प्राप्त करेंगे। राज्य के मौजूदा मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज जमा नहीं करना होगा, उन्हें केवल प्रीफिल्ड फॉर्म का सत्यापन कर हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि BLO ने मतदाताओं की स्वयं और पैतृक मैपिंग का पहला चरण पूरा कर लिया है। इसके आधार पर जिन मतदाताओं की मैपिंग सही पाई गई है, उन्हें दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल नवीनतम रंगीन फोटो और हस्ताक्षरित फॉर्म देने के बाद उनका नाम, प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

हर मतदाता को अनिवार्य रूप से इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करना होगा। बीएलओ द्वारा दस्तावेजों की मांग केवल उन्हीं मामलों में होगी जहां मैपिंग नहीं हो पाई या रिकॉर्ड में विसंगति पाई गई हो। अनमैप्ड मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा। ईआरओ इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर मतदाता का सत्यापन कर उसे मतदाता सूची के ड्राफ्ट में शामिल करेंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का

आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय आप है आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। दिन के 12:05 और 22 सेकंड्स हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत सुनेगा बस कुछ पलों के बाद।

रोज की तरह आज भी तारे सुबह के गर्द में ना खो जाएं, आ तेरे गम में जागती आंखें कम से कम एक रात सो जाएं।

चलते चलते आपको बताते चलें, कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम हैं रजिया सुल्तान, उमराव जान, चंबल की कसम और बाजार। इन गानों के लिए आवाजें थीं लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। गानों को लिखा जानिसार अख्तर, शहरयार, साहिर लुधियानवी और मीर तकी मीर ने। संगीतबद्ध किया खय्याम ने। अब भावगीत कार्यक्रम से श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। ये सुनते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग है वृंदावनी सारंग।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 से सुनेगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता

0: को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हुल दिवस पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा, संथाल से हमारे पुरखों ने शोषण और अन्याय को दी चुनौती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का आज से पालन कराने का दिया निर्देश। झारखंड में एसआईआर शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ एसआईआर की समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत, 43 संक्रमित लोगों का इलाज जारी। और जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के 3 तीरंदाजों गोल्डी मिश्रा, आदित्य वाधवा और के युक्ताश्री का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। राज्यभर में आज हुल दिवस के मौके पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में हुल क्रांति के शहीद महानायक सिद्धो कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हुल क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हुल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू सहित सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमारे वीर पुरखों का संघर्ष ही हमारी पहचान है और उनका बलिदान हमारी शक्ति है।
1: जब देश में आदिवासी समुदाय के लोग शोषण का शिकार हो रहे थे, ये लोग कैसे उस शोषण से बाहर निकले इसकी रणनीति बना रहे थे। अंतोगत्वा उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूका। और आज हमें गर्व है कि आज इन वीर सपूतों के बदौलत झारखंड को एक वीर भूमि भी हम कहते हैं और उनके सम्मान में उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
0: इधर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हुल दिवस पर संथाल हुल के महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके संघर्ष को जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। झारखंड में एसआईआर आज से शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी तोरपा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित बीएलओ और बीएलए 2 की बैठक का निरीक्षण कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा की। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने सरायकेला में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कार्य योजनाओं की समीक्षा की।
2: आज जो है ये सारे चीज कार्यक्रम की विवरणी आपको उपस्थित होकर बताया जा रहा है, जिसमें नए वोटर को जोड़ने की आहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2026 है। बीएलओ द्वारा घर घर का दौरा किया जाएगा जो आज से शुरू हो रहा है 29 जुलाई तक, जिसमें कि इन्यूमरेशन फॉर्म प्रत्येक मतदाता को 2-2 इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा।
0: उधर हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि जिले में लगभग 81% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। वहीं जिनका मैपिंग नहीं हुआ है उन्हें प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
3: 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक सभी लोग अपना गणना प्रपत्र भर करके बीएलओ को वापस कर दें। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस समय उपलब्ध नहीं है अपने मतदान केंद्र में, अपने घर में उपलब्ध

0: नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनका कोई नातेदार वो पीडीएफ बना करके उनको मोबाइल पर भेज दें, वो प्रिंट आउट निकाल करके उसको भर करके सिग्नेचर करके पुनः पीडीएफ वापस कर दें, तो ऐसी स्थिति में भी हम उसको कंसीडर करेंगे और वो गणना प्रपत्र मान्य होगा और उनका मतदाता सूची में जो ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाना है 5 अगस्त को, उस ड्राफ्ट प्रकाशन में उसका नाम आ जाएगा।
1: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक 2 जुलाई को झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से होगी। बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने और नीतिगत मामलों पर चर्चा होने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धनबाद जिले में सहकारी सप्ताह समारोह शुरू हुआ। जिला सहकारिता पदाधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सहकारिता के आंदोलन को लोगों तक पहुंचाना, समितियों को सुदृढ़ करना, स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक और सामाजिक विकास को गति देना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी से कल 4थी मौत दर्ज की गई। उपायुक्त राजीव रंजन ने अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी ली।
3: वही देखने हम लोग आए थे, यहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ ब्रेन मलेरिया वाले पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, खास करके बच्चे हैं। तो ज्यादातर की स्थिति ठीक है, यहाँ पे कई लोग तो रिकवर कर गए हैं। एक दो बच्चे हैं जो भी सीरियस हैं, तो उनको जो बेस्ट दिया जा सकता है, ये डॉक्टर साहब लोग सब प्रयास कर रहे हैं उनको। दवाई ववाई सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ अवेलेबल है।
1: वहीं जिले के चिकित्सा पदाधिकारी साहिर पॉल ने बताया कि प्रभावित गाँव में जाँच के बाद 43 लोगों में ब्रेन मलेरिया की पुष्टि हुई। वहां निगरानी, जांच और उपचार अभियान चलाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। आईटी, मेटल और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेयर कमजोर बने हुए हैं। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह और हजारीबाग में बादल गर्जन के साथ बारिश का अनुमान जताया है। जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के 3 तीरंदाजों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हुआ है। गोल्डी मिश्रा और आदित्य वाधवा एशिया कप स्टेज 2, स्टेज 3 और एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में ईरान, चीन और दुबई में खेलेंगे। वहीं के युक्ताश्री का चयन एशिया कप स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हुल दिवस पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारी

अधिकारियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा, संथाल से हमारे पुरखों ने शोषण और अन्याय को दी चुनौती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का आज से पालन कराने का दिया निर्देश। झारखंड में एसआईआर शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ एसआईआर की समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत, 43 संक्रमित लोगों का इलाज जारी। और जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के 3 तीरंदाजों गोल्डी मिश्रा, आदित्य वाधवा और के युक्ताश्री का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी देर में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
5: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
0: दिन के 1:22 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना। आवाजें हैं अरिजीत सिंह, नीति मोहन और सुनिधि चौहान की। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार विशाल शेखर।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं दिल का रिश्ता फिल्म का गीत, आवाज है अलका याग्निक की, रचना है समीर की और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
0: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: अंतराल हुआ पूरा, अब आइए सुनते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं KK और KS चित्रा की। गाने के बोल लिखे देव कोहली ने और संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं लापता लेडीज फिल्म का गाना। आवाज है अरिजीत सिंह की, रचना है प्रशांत पांडे की और धुन बनाई राम संपत ने।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने वाले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और फिर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके

0: 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है।

0: ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने एफएटीएफ की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने एफएटीएफ के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एफएटीएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा हुआ गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था इजाजत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, अंतराल में जाने से पहले आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में इजाजत फिल्म का गाना। अब आइए सुनते हैं हरिहरन और लता मंगेशकर की आवाजों में लम्हे फिल्म का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार शिव।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे सिर्फ तुम फिल्म का गीत। रचना थी समीर की और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब

श्रोताओ, इस समय आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। आपको याद दिला दें, दोपहर 3 बजे से आप सुनेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 का समय होगा सुगम संगीत का। 3:45 का समय होगा झारखंड के लोकगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा खरिया में गीत। कलाकार होंगे बुधराम खरिया और

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य में आज से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग के आला अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी जिले के तुरपा प्रखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने कई मतदान केंद्रों पर BLO और बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उधर लोहरदगा जिले में इस अभियान का जायजा लेने आज खुद जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना मतदान केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने बंगला रोड स्थित आयुष

0: कच्छी उर्दू बालिका विद्यालय के विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ को गणना प्रपत्रों का जल्द वितरण करने और समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों से भी अपील की कि वे आम जनता को इस अभियान के प्रति जागरूक करें।
1: 7 अक्टूबर को फाइनल जो वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होना है, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी हम लोग जो 30 जून से लेकर के 29 जुलाई हमारे सारे बीएलओ जो है एनुमरेशन फॉर्म लेकर के घर घर जाएंगे और घर घर जाने के बाद जितने भी हमारे मतदाता हैं वो उस पर हस्ताक्षर करके वापस करेंगे और जिनका एनुमरेशन फॉर्म लौटेगा उन्हीं का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 5 अगस्त को प्रकाशित होगी।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान 11 अक्टूबर को पटना में जयप्रकाश नारायण जयंती मनाने का आह्वान किया। उन्होंने झारखंड सरकार पर विकास कार्य रोकने का आरोप लगाया और कांग्रेस को संविधान का हत्यारा बताया।
2: अब यहाँ का पहाड़, यहाँ का पत्थर, यहाँ का गिट्टी और यहाँ के लोगों को 300 उसके अलावा जीएसटी वाला बालू का टेंडर नहीं हो रहा। ये विकास अवरुद्ध है। सड़कें टूटी फूटी, बीच में थोड़े बहुत रिपेयरिंग हुए हैं, नहीं तो कोई अच्छी सड़क नहीं। आज विकास के लिए पैसे नहीं है। अब आप कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हो और यहाँ घोषणा कर दिया कि हम इतना रुपया, ये जो जनता को खरीदने की बात जहाँ जहाँ भी होती है, राजनीति इस रूप में नहीं होनी चाहिए।
0: राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11:30 बजे लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चारों नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस समारोह में राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज हुल दिवस शौर्य और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। संताल विद्रोह के अमर शहीदों को नमन करने के लिए राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में हुल क्रांति के महानायक सिद्धो कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो सहित तमाम वीर शहीदों को नमन किया। उधर उप राजधानी दुमका में संताल हुल दिवस के अवसर पर पोखरा चौक स्थित सिद्धो कान्हू और फूलो झानो की प्रतिमाओं पर जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता सीता सोरेन ने इस अवसर पर सरकार की विकास नीतियों पर सवाल उठाए, जबकि विधायक बसंत सोरेन ने जल जंगल जमीन की रक्षा का संकल्प दोहराया।
3: मैं इतना ही कहूंगा कि आज के दिन को लोग जरूर याद करें, जरूर मनाएं और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन चीजों को याद करते हुए, उन्हें अनुसरण करते हुए अपने जीवन को प्रेरणा के तौर पर एक उनके द्वारा कार्य जो उन्होंने किए हैं उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें।
0: रांची के गढ़खंडा में खेत बचाओ अभियान के तहत एक किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से वैज्ञानिक और जलवायु अनुकूल खेती अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 500 से अधिक जनजातीय किसानों के बीच उन्नत बीज और कृषि किट बांटे गए। जामताड़ा के दुलाडीह स्थित प्रखंड रिसोर्स सेंटर में आज विशेष विकलांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल पर सचिव पवन कुमार ने कहा कि सभी दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण कर उन्हें जरूरी उपकरण और चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। शिविर में विकलांगता प्रमाण पत्र भी बांटे गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
2: जी,
1: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
2: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
2: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया।

0: हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे,
4: हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे,
4: हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी,

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: काम काम काम, सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काम काम काम।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
4: क्या
6: क्या
4: क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
4: नीचा
3: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? आ, करता होगा पड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं, काम काम काम। रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा, मुझसे बतियाने से पहले अरे तुम मुंह तो धोकर आ।
3: काम काम काम। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
6: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: का

कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांटकर उसे भगाया। रिमझिम रिमझिम बरखा आई, पपीहे ने झूमकर गाया।

0: जाबाई पपी हना पिए तू जाबाई
1: काँ काँ काँ अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली
2: बहु बहु बहु अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा भाव भाव कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं
1: काँ काँ काँ कुत्ते देख नहीं रहे शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे काँ काँ शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ पपीहे सुन पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी
2: हाँ हाँ इसकी यही सजा हो
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था नदी नाले सब सूखने लगे भयंकर लू चलने लगी जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे
1: काँ काँ अरे वो देखो वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है काँ
5: हाँ और किसी जंगल में पानी नहीं है ना सारे जानवर यहीं आ रहे हैं भयानक गर्मी है ना
6: भाई मैं तो ठहरा कछुआ दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ कोयल बहन ठीक कह रही है सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है
1: अरे कछुए भैया दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए हाँ
6: हाँ कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे
5: क्यों नहीं मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब तुम हंस क्यों रहे हो कौवे क्या मैंने गलत कहा
1: अरे नहीं नहीं कोयल मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे
5: बाप रे मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है वैसे वो क्या करता है आजकल इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका
6: हाँ मैं भी हैरान हूँ कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की
1: काँ काँ हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: बरखा कब बरसेगा पानी, प्यासा पपीहा मर ना जाए बिन बारिश बिन पानी, बिन बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई,

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। ये सुनते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का गाया

आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का गाया ठुमरी। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है झारखंड के लोकगीत। कार्यक्रम में ये सुनते हैं खड़िया में लोकगीत। कलाकार हैं बुधराम खड़िया और साथी।

0: बुधराम खड़िया और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे खड़िया में लोकगीत। इसी के साथ झारखंड के लोकगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे
1: मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। हुल दिवस पर संथाल हुल की ऐतिहासिक धरती भोगनाटी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया है कि भोगनाडीह को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोगों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है। धनबाद में आज हुल दिवस पर वीर सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि दी गई। बरमसिया पुल चौक पर विधायक राज सिन्हा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीदों का अदम्य साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेगा। सिमडेगा में भी आज हुल दिवस पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू को याद किया गया। आजसू पार्टी के जिला कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को नमन किया। दुमका के शिकारीपाड़ा से विधायक आलोक कुमार सोरेन ने आज क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हुल दिवस के मौके पर उन्होंने पांच पहाड़ी, जीवनपुर चौक और जगदीशपुर सहित कई जगहों पर शहीदों को नमन किया। पलामू के पोखराहा और जोड़ में ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। पांके विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे का काम पूरा होने तक जोरकट टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली रोकने की भी मांग की। रामगढ़ के पतरातू में आज युवा राष्ट्रीय जनता दल की युवा संवाद चौपाल यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्य के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि राजद की नीतियों और लालू प्रसाद की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत कर रहे हैं 1920 एविल रिटर्न्स फिल्म के गान के साथ। आवाजें हैं केके और सुजैन डिमेलो की। रचना है शकील आजमी की और तर्ज बनाई चिरंतन भट्ट ने।

0: 1920 न्यू, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी फरहान साबरी और ऐशा गौर की। गाने की बोली के श्वेता भोत्रा ने और धुन बनाई पुनीत दीक्षित ने। और इसी गाने के साथ श्रोताओं कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म थी एक दूजे के लिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये अगला गाना।

आप तो ऐसे न थे। ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। बोल थे निदा फाजली के, संगीत उषा खन्ना का। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्मी गानों का।

0: थोड़ी सी बेवफाई। ये था फिल्म का नाम, जिसका गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाजें थी, बोल थे गुलजार के, संगीत था खयाम का। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गाने।
1: अरे

0: सीता और गीता ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें थी। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था आर टी बर्मन का। और श्रोताओं इसके साथ ही फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार। फिल्म संगीत आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। अगला प्रसारण होगा रांची केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य में आज से SIR अभियान शुरू हो गया है। गढ़वा में इसके तहत घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्र ने बताया कि इस अभियान में BLO मतदाताओं की मैपिंग साल 2003 की मतदाता सूची से सुनिश्चित करेंगे। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित EVM वेयरहाउस का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और मशीनों के रख रखाव का जायजा लिया। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए वेयरहाउस की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र के बालसगरा गांव में भूमि विवाद को लेकर गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल का की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई है। मांडू के विधायक निर्मल महतो ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक पूर्णिमा साहू और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि शहर में अपराधी बेखौफ हैं और प्रशासन पूरी तरह विफल है। सरायकेला खरसावां में आज हूल दिवस पर ग्रामीण एकता मंच द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। खरकई नदी के माजना घाट से शुरू होकर यह यात्रा पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य अंतरों के साथ सिद्धू कान्हू पार्क पहुंची। यहां ग्रामीणों ने वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आज का प्रसारण हुआ आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं रेशमा। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी हमें नया नजरिया दे देती है। कोई जानकारी हमारे भविष्य की राह आसान कर देती है, कोई सलाह हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले आती है और किसी महान व्यक्ति के विचार हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। तो आज की यह मुलाकात भी कुछ ऐसे ही होने वाली है। आइए बातों बातों में कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं।

दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर किसी विद्यार्थी में प्रतिभा हो, मेहनत करने का जज्बा भी, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़े, तो क्या यह केवल उस विद्यार्थी का नुकसान होगा? शायद नहीं, यह देश की उस प्रतिभा का भी नुकसान होगा जो आगे चलकर एक वैज्ञानिक, शिक्षक, पत्रकार और बहुत कुछ बन सकती थी। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना यानी पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया शुरू की। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा केवल पैसे की कमी के कारण ना रुके। यह योजना विशेष रूप से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि पीएम यशस्वी केवल एक छात्रवृत्ति नहीं बल्कि एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंतर्गत प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, उत्कृष्ट विद्यालयों और उत्कृष्ट कॉलेजों में शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग शामिल है। अब सवाल ये है कि इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है? तो दोस्तों, यदि विद्यार्थी निर्धारित श्रेणियों से संबंधित है, परिवार की वार्षिक आय सरकार तय सीमा के भीतर है और सारी पात्रता पूरी करता है, तो वह छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आज के समय में पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। स्कूल की फीस, किताबें, इन सब में अच्छा खासा खर्च आता है। ऐसे में यदि सरकार आर्थिक सहयोग दे रही है तो उसका लाभ उठाना बिल्कुल उचित है। एक और महत्वपूर्ण बात, अक्सर ऐसा होता है कि विद्यार्थी आवेदन अंतिम दिन के बारे में उनको पता चलता है, इसलिए समय समय पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और संबंधित वेबसाइट पर जानकारी देखते रहना बहुत जरूरी है।

मैं अपने सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूंगी कि यदि आपके विद्यालय, कॉलेज, परिवार या मित्रों में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो इस योजना के लिए पात्र हो, तो उसे इसकी जानकारी जरूर दें। याद रखिए, किसी की मदद हमेशा पैसे देकर ही नहीं की जाती, कभी कभी सही समय पर दी गई सही जानकारी भी किसी का भविष्य बदल सकती है। इन्हीं उम्मीदों और नए सपनों के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

अभी आपने सुना फिल्म दोस्ताना का गीत खबर नहीं, जिसे आवाज दिया था विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल, अमानत अली और राजा हसन ने। गीतकार अन्विता दत्त और संगीतकार विशाल शेखर थे।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? कुछ लोग कहेंगे कड़ी मेहनत, कुछ कहेंगे अच्छी किताबें, लेकिन सच तो ये है कि सफलता के लिए सही दिशा, नियमित अभ्यास और धैर्य, तीनों का साथ होना बहुत जरूरी है। आज लाखों युवा यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन पहले से कहीं अधिक है, इसलिए तैयारी भी सोच समझ कर करनी होगी। सबसे पहले परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न को अच्छी तरह समझिए। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार एक ऐसा स्केड्यूल बनाइए जिसका पालन रोजाना किया जा सके। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ने से कहीं अधिक प्रभावी होता है।

तैयारी के दौरान बहुत सारे किताबी इकट्ठा करने के बजाय कुछ अच्छी और भरोसेमंद किताबों से पढ़ाई करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इंटरनेट पर जानकारी बहुत है, लेकिन हर जानकारी उपयोगी नहीं होती, इसलिए किताबों के साथ साथ सरकारी वेबसाइट्स और भरोसेमंद श्रोताओं पर भी ध्यान दें। इसके अलावा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना और नियमित मॉक टेस्ट देना भी बेहद जरूरी है। इससे परीक्षा का स्तर समझ में आता है और समय प्रबंधन में भी सुधार होता है। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और थोड़ा सा व्यायाम आपकी याददाश्त और कंसंट्रेशन दोनों को बेहतर बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। हर विद्यार्थी की अपनी गति और अपनी परिस्थितियां होती है। अगर किसी प्रयास में सफलता ना मिले तो उसे हार नहीं बल्कि अगली सफलता की तैयारी समझिए। कहा भी गया है, सफल वही होता है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आपकी तैयारी नियमित है और आपका आत्मविश्वास बना हुआ है तो सफलता निश्चित रूप से आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए इसी सोच और जोश के साथ सुनते हैं

अभी आपने सुना फिल्म वेकअप सिड का गीत इकतारा, जिसे आवाज दिया था कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य ने। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार अमित त्रिवेदी थे। दोस्तों, आज का दिन हमें भारत के एक ऐसे महान विचारक, समाज सुधारक और राष्ट्रभक्त को याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से राष्ट्र निर्माण की दिशा को नई सोच दी। आज दादा भाई नरोजी की पुण्यतिथि है। उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करना केवल इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि उनके विचारों को समझना भी है, जो आज भारत के लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। आइए इस अवसर पर जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण के प्रति दादा भाई नरोजी का दृष्टिकोण क्या था और उनके विचार आज के युवाओं को क्या प्रेरणा देते हैं।

दादा भाई नरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 नवसारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे शिक्षक भी थे, समाज सुधारक भी, अर्थशास्त्री भी और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक में से एक भी। उन्हें सम्मानपूर्वक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे ऐसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन की संसद के लिए चुने गए। वहां रहकर भी उन्होंने भारत की समस्याओं को पूरी दृढ़ता से दुनिया के सामने रखा। दोस्तों, दादा भाई नरोजी का सबसे प्रसिद्ध योगदान था उनकी ड्रेन थ्योरी। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि भारत में पैदा होने वाली संपत्ति और संसाधनों का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन चला जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत आर्थिक रूप से कमजोर होता गया। उस समय शायद पहली बार किसी भारतीय नेता ने इतने ठोस आंकड़े और तथ्यों के आधार पर यह समझाया कि देश की गरीबी केवल लोगों की मेहनत की कमी नहीं, बल्कि अपनी वैश्विक आर्थिक

लेकिन दादा भाई नरोजी केवल समस्याएं बताने नहीं रुके, वे समाधान की भी बात करते थे। उनका मानना था कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, युवाओं को अवसर मिलने चाहिए और शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। उनका विश्वास था कि जब नागरिक जागरूक होंगे और शासन में उनकी आवाज सुनी जाएगी, तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। दोस्तों, आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन दादा भाई नरोजी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा ईमानदारी, मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना, कानून का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना, समाज के प्रति संवेदनशील रहना और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना भी राष्ट्र सेवा का

आइए आज दादा भाई नरोजी को याद करते हुए हम भी एक छोटा सा संकल्प लें, जहाँ भी रहे, जिस भी क्षेत्र में काम करें, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपना योगदान देंगे, क्योंकि मजबूत भारत का निर्माण केवल बड़े फैसलों से नहीं बल्कि हर जागरूक नागरिक के छोटे छोटे प्रयासों से होता है। तो दोस्तों, इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव, समसामयिक जानकारी की ओर।

आज 30 जून को झारखंड में हुल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 1855 के संथाल हुल की स्मृति में आदिवासी वीरों सिधो कानू, चांद भैरव और फूलो झानों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करने के लिए मनाया जाता है। श्रोतकर्ताओं ने ब्राकी बैक्टीरियम नेताजी नामक नए पॉल्यूशन ईटिंग बैक्टीरिया की खोज की। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को HDFC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरकार ने महाराष्ट्र के पलघर में स्थित भारत के पहले अपतटीय हवाई अड्डे की परियोजना को मंजूरी दे दी।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है। आज राउंड ऑफ 32 के तहत आइवरी कोस्ट और नॉर्वे, फ्रांस और स्वीडन तथा मेक्सिको और इक्वेडोर के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। तो दोस्तों, आज का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन विदा लेने से पहले आइए सुनते हैं एक गीत।

अभी आपने सुना फिल्म दो स्टेट्स का गीत मस्त मगन, जिसे आवाज दिया था अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा ने। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार शंकर एहसान लॉय थे। तो दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का युववाणी यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए मुझे रेशमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये थी आज की युववाणी FM 102.4 MHz पर. आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ. प्रस्तुत है श्रमिक बंधुओं के लिए कार्यक्रम कल कारखाने.

कल कारखाना सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को स्नेहलता का नमस्कार। श्रोता साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में।

श्रोता साथी, मनोरंजन जो हर इंसान की जिंदगी में खुशी और ताजगी भर देता है, इसका होना हमारे जीवन को ऊर्जावान रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे खाने में नमक का होना, नमक के ना होने पर या कम होने पर खाना फीका होता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में मनोरंजन का होना जरूरी है। श्रोताओं, ये कई तरह के होते हैं। अलग अलग व्यक्तित्व के लिए मनोरंजन के साधन भी अलग अलग होते हैं। श्रोताओं, जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं। अगर सिर्फ काम और जिम्मेदारियां हों तो जीवन निरस हो जाता है, थका देने वाला हो जाता है, तनाव बढ़ जाते हैं और ऊर्जा खत्म हो जाती है।

जीवन को यूं जीने से अच्छा है कि जीवन को सरस और ऊर्जावान बनाया जाए, तनाव को दूर करने के उपायों को जीवन में शामिल किया जाए, तो वो है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन। इसके साथ जीवन जीने से जीवन जीने का मजा आता है। श्रोताओं, काम तो करना ही है क्योंकि आर्थिक अर्जन जरूरी है। जीवन को सरलता से जीने के लिए तो क्यों ना इसे पूरे आनंद के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ करें, और ऐसा करने के लिए हमारे तन और मन को स्वस्थ और ताजगी भरा होना जरूरी है। इसी समय मनोरंजन के साधन मन को राहत, तनाव को कम और नई ऊर्जा देते हैं हमें। श्रोताओं, आपने महसूस किया होगा कि जब हम संगीत सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, खेलते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, तो हमारे मन की थकावट, दिमाग का भारीपन या तनाव कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, क्योंकि मनोरंजन मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करता है और जीवन को खुशहाल बनाता है।

0: दिल चाहता है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शान के शंकर महादेवन की आवाजों में। शब्द रचना थे जावेद अख्तर के, संगीत निर्देशन था शंकर एहसान लॉय का। और श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, लेते हैं जानकारी भेंट वार्ता के जरिए। विषय है बरसात के मौसम में त्वचा की उचित देखभाल। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजीव रंजन। आइए सुने ये भेंट वार्ता और ले जानकारी। श्रोता साथी, बारिश की रिमझिम फुहारें गर्मी से तपती धरती की तपिश को शीतलता प्रदान करती है। चारों तरफ हरियाली नजर आती है सूखे पेड़ पौधों की जगह। लगभग सूख गए जलाशयों में फिर से पानी के लबालब भरने से हलचलों का शोर। यूं लगता है मानो सारी प्रकृति ने, हमारी धरा ने श्रृंगार किया है। पर इस बारिश के मौसम में हर चीज मन को लुभावने वाली नहीं होती है। चारों तरफ गीलेपन की वजह से, गंदगी, जल जमाव, कीचड़ की वजह से कुछ बीमारियां भी पनपती हैं, जो जाने अनजाने विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, और फिर बारिश के मौसम की खूबसूरती हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि हम इस मौसम में परेशान हो जाते हैं। बारिश के मौसम में हमें त्वचा संबंधी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसका समाधान क्या है, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन ठाकुर को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे ये जानें कि बारिश का मौसम यूं तो संक्रमण का ही मौसम है, पर त्वचा संबंधी किन संक्रमणों से हमें दो चार होना पड़ता है इस मौसम में?
1: देखिए, बारिश के मौसम में जैसा आपने बताया, बारिश में गीलापन थोड़ा ज्यादा होता है, भीगने की वजह से गीलापन ज्यादा होता है, फंगल इन्फेक्शन हम बोलते हैं, ये प्रॉब्लम बारिश में बढ़ जाती है। चूंकि पसीना होता है, भीगने के कारण पानी जमा रह जाता है, उसके कारण फंगस हमारा ज्यादा ग्रो कर जाता है। और ये केवल त्वचा तक ही नहीं सीमित रहता है, बारिश में जो खास करके महिलाएं अगर पानी होने की काम ज्यादा करती हैं, या जो खेतों में हमारे भाई किसान भाई लोग काम करते हैं, तो बारिश ज्यादा देर तक, बारिश का पानी लगने से नाखून में भी फंगल इन्फेक्शन, मतलब त्वचा

0: लगती है,
1: मतलब बहुत सारी समस्या इस मौसम में हो जाती है। तो क्या सतर्कता बरतनी चाहिए हमें, क्या सावधानी अपनानी चाहिए इस मौसम में?
0: सबसे पहला चीज तो आप त्वचा को साफ और सूखा रखें। सूखा कैसे, मतलब बहुत बार होते हैं बारिश में हम लोग कहीं कारणवश जा रहे हैं, बारिश में भींग गए, तो आने के बाद सबसे पहले आप नहाइए और बदन पोछ के सूखा कर लीजिए, कपड़ा गीली कपड़े को हटा दे। बरसात में क्या होता है, कपड़ा सूख नहीं पाता है, धूप नहीं होती है, सूख नहीं पाता है, तो उसका तरीका करें, अगर कपड़ा धोए हैं तो उसको अच्छे से पंखे के नीचे सुखाएं और आयरन कर दें। आयरन बहुत अच्छा होता है कोई भी स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए। अगर आप अपना कोई भी कपड़ा अगर आयरन कर दे रहे हैं तो उसमें अगर फंगस जमा हुआ भी है तो वो आयरन से मर जाता है, तो जिसके कारण आपको खास करके फंगस में वो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाता है।
1: मतलब कपड़ा सूख गया और वो शरीर भी सूखा, गीलापन का एहसास नहीं,
0: गीलापन का एहसास नहीं हो, पहला। दूसरा, आप अगर जैसे आपको ड्राई स्किन आपका है तो आप उसको थोड़ा सा नारियल तेल का इस्तेमाल करें, खास करके नहाने से पहले नारियल तेल लगा के आधे घंटे एक घंटे रख के फिर नहा ले, सर में भी, बाल में भी, बदन में भी, तो उससे आपको ड्राइनेस कम होगा, तो सर में
1: मॉइस्चराइज
0: होगा, बॉडी को भी मॉइस्चराइज रखेगा, बाल को भी मॉइस्चराइज रखेगा, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी कम होगी।
1: मतलब बारिश के मौसम में पसीना और पानी, बारिश का पानी दोनों मिलकर
0: इन्फेक्शन करते हैं।
1: आप बता रहे थे कि बारिश के मौसम में खुजली की समस्या हो जाती है, रैसेस हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या समाधान है?
0: फंगस कभी भी ह्यूमिडिटी में ज्यादा होता है, तो एक तो बारिश में यूजुअली जो पानी गीला रह जाता है, कपड़ा गीला रह जाता है, पानी जमा होता है, तो उसके कारण ये फंगस को ग्रोथ जल्दी होता है, तो ह्यूमिडिटी जहां भी रहेगी फंगस का ग्रोथ ज्यादा होगा, इसीलिए थोड़ा भी बारिश गीला कपड़ा रह गया या गीला थोड़ा देर आप रह गए तो ये फंगस ज्यादा ग्रो करता है,
1: तो खुजली
0: की समस्या बढ़ जाती है। इसी तरह अगर थोड़ा ड्राई हो गया स्किन तो उसमें भी खुजली की प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
1: अच्छा, यदि कोई स्किन समस्या हो रही, बारिश के टाइम में ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो कुछ घरेलू उपचार भी हम कर सकते हैं?
0: नारियल तेल इसमें काफी कारगर होता है, आप नहाने से पहले डेली नारियल तेल थोड़ा लगाएं तो वो शरीर को भी मुलायम रखता है, और अगर बारिश पानी वानी जमा भी हो रहा है तो उसको वो जमा नहीं होने देता, थोड़ा फिसलन कर देती है उस एरिया में, तो नारियल तेल सबसे अच्छा उपाय होता है, और कपड़ा को आयरन करना, सूखा रख। अच्छा। ये घरेलू उपचार करके आप
1: बहुत ज्यादा पानी में रहने की वजह से कभी कभी पैरों में, कहते हैं पैर में पानी लग गया या
0: जी, सेम वो फंगस ही होता है, कैंडिडल इन्फेक्शन बोलते हैं। बारिश के पानी से उंगलियों के बीच में, खास करके उंगली के बीच में पानी जब जमा हो जाता है तो वो उसके कारण भी वहां इन्फेक्शन कराता है, तो इसीलिए जब भी आप बारिश में या ऐसे भी नहाएं या जब भी पैर धोए तो पैरों को भी साफ करके, आदमी क्या करते हैं बदन पोछ के सूखा करता है बट पैर ऐसे ही भींगा रहता है, तो उसको पोछ के सूखा रखे, उससे आपका जो उंगलियों के बीच में भी इन्फेक्शन होता है वो भी बचेगा, और नाखून में भी जैसे मैंने बताया फंगल इन्फेक्शन वो भी उससे थोड़ा बचता है।
1: अच्छा, किसी का काम ही है कंटिन्यूअस वो, उनको पानी में आना जाना है या पानी का काम ही है, तो वो वहाँ पे प्रिकॉशन कैसे मिलेगा उनको, क्या पहली सावधानी वो क्या ले कि पानी में रहे तो भी प्रभावित ना हो उससे?
0: उसके लिए जैसा मैंने बताया नारियल तेल काफी कारगर होता है, अगर आप तेल लगा ले रहे हैं तो उससे पानी जमा नहीं होता है, वो थोड़ा फिसलन उस एरिया में कर देता है, जैसे उंगली के बीच में ही आपने नारियल तेल लगा लिया, कभी पानी आप डाले तो देखेंगे तेल में वो फिसलन हो जाता है, जमा नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: तो वो बचा सकता है, और जैसे काम खत्म हो जाए आपका, जब भी काम खत्म हो जाए आके साफ पानी से पैर धो के पोछ के सूखा रख लेना है उसको, ठीक है, और जैसे थोड़ा सा तेल तो मैंने बताया उसको पहले लगा लेना है।
1: ये घरेलू उपचार हो गया, यदि ये गंभीर नहीं है, सामान्य है, थोड़ा बहुत है, तो ये घरेलू उपचार कर लेंगे।
0: घरेलू उपचार करेंगे उसी से हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी स्किन डॉक्टर से ही उसको दिखा के ट्रीटमेंट ले, किसी भी दवा दुकान से या कहीं से भी कोई दवा लेके उसको ना यूज करें, बिकॉज आजकल ज्यादातर देखते हैं हम लोग स्टेरॉइड क्रीम्स बहुत आसानी से, कोई भी दवा दुकान में आप किसी से भी पूछ लीजिए तो वो सारे क्रीम आपको दे देते हैं। शुरू में वो तो उसको थोड़ा कम, फंगल इन्फेक्शन को या भी किसी भी बीमारी को वो कम तो कर देता है, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं जिसके कारण वो पूरे बॉडी में भी फैल जाता है और जगह भी होने लगता है। इसीलिए कभी भी हल्का भी हो तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा ले, हल्का अगर आपका कम बीमारी है तो वो कम खर्च में जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं दिखाने से, कोई भी दवा यूज करने से वो उसमें और उल्टा प्रभाव होता है और बढ़ा देता है।

0: मतलब उस समय तो आपको प्रभाव दिखेगा कि हाँ बीमारी में आराम हो रहा है, लेकिन बाद में उसका
1: और बढ़ा देता
0: बुरा परिणाम हो सकता है। अच्छा, इस मौसम में बाल टूटने झड़ने आप पहले बता रहे थे कि रूसी की समस्या हो जाती है, तो इसका क्या निदान है? चेहरा में पिंपल हो जाए, ये बहुत आम समस्या है। पिंपल की समस्या बारिश में ज्यादा बढ़ जाती है क्या?
1: बारिश में अगर हम लोग देखें, अगर आप बारिश में पानी में भींग रहे हैं तो पिंपल जो होता है वो बेसिकली एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बरसात में थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसके कारण पिंपल्स भी बढ़ता है। और डैंड्रफ मैंने बताया था, चूंकि स्किन फ्लेकी हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाते हैं, जिसमें डैंड्रफ बढ़ता है, तो वो बाल झड़ने की समस्या को बढ़ा देता है। तो उसका वही समाधान है, मैंने जैसे बताया, बाल को मुलायम रखने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल करें। बहुत सारी एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आती है, एंटी डैंड्रफ जिसमें कोई स्टेरॉइड नहीं हो, वो आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू करके थोड़ा सा झाग को 2-3 मिनट रख के उसको वॉश करें, हफ्ते में 2 दिन भी करें, तो वो काफी कंट्रोल कर देता है। इसी तरह पिंपल्स में भी सिंपल क्रीम आती है पिंपल्स की, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी ये सब हो, आप एक बार किसी स्किन
0: रोग विशेषज्ञ से आप जरूर जान लें कि कौन सा शैम्पू और कौन सा क्रीम
1: लगाना है,
0: आपको यूज करना है। और बात करें खान पान की, तो इससे परेशानी चाहे बारिश का मौसम है चाहे कोई भी मौसम हो, इससे बढ़ती ही है यदि खान पान सही नहीं हो। तो बारिश के मौसम की बात करें, तो बारिश के मौसम में क्या सावधानियां होनी चाहिए खान पान में?
1: देखिए, बारिश के मौसम में खास करके फल हो गए, सब्जी हो गए, इसको आप जब भी कहीं से भी लाते हैं, कहीं भी बिक्री होती है, तो बारिश का पानी उसमें लगते ही है, जिसके कारण उसमें जर्म्स डेवलप करते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए कोई भी, मतलब बारिश के समय में जब भी सब्जी और फल लाए तो उसको अच्छे से धो के तब उसका प्रयोग करें, तब उसे खाए, नहीं तो अदरवाइज उसे इन्फेक्शन आपको हो सकता है, फिर वो आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है। बच्चों में जल्दी इन्फेक्शन होने की संभावना है बड़े आदमी से, तो फल का और सब्जी का सेवन करने से पहले उसे अच्छी तरह से धो के तभी उसका सेवन करें।
0: वैसे तो ये हमेशा ही लागू होता है कि जब भी हम कोई फल सब्जी खाएं, किसी भी मौसम में खाएं, तो पूरी सतर्कता से खाएं, साफ सफाई के साथ खाएं, और बारिश के मौसम में ज्यादा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं, ये तो बड़ों की बात हमने की या सामान्य बात हमने की, अब आते हैं बच्चों पर। बच्चों को इस मौसम में क्या परेशानियां होती हैं?
1: देखिए, बरसात बच्चों के लिए बहुत खराब होता है। अगर बीमारी के लिए हम बात करें, बच्चे बरसात में भींगते हैं तो ऐसा नहीं, त्वचा लिए
0: बहुत मजा करते हैं, बारिश में भींगते हुए
1: मजा करते हैं, तो उनको सर्दी खांसी थोड़ी जल्दी पकड़ती है। अगर हम स्किन की तरफ से बात करें तो एलर्जी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। पॉलन एक होता है जो कि बरसात में, जो कि बहुत सारे फूल में, पत्तों में ये पाया जाता है, बरसात घास में ये पाया जाता है, तो उससे बच्चों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है।
0: अच्छा।
1: बरसात में मच्छर की संख्या बढ़ जाती है, तो बहुत जन के बच्चों के स्किन सेंसिटिव होते हैं, तो उनका एक वर्ड होता है पैपुलर अर्टिकेरिया, वो मच्छर काटने की वजह से होता है।
0: अच्छा।
1: बच्चों को मच्छर काटने से दाना दाना वो पूरे हाथ में, पैर में हो जाता है, खुले भाग में बेसिकली होता है।
0: अभिभावक चिंतित
1: हो जाते हैं,
0: बीमारी हो गई,
1: लेकिन वो केवल मच्छर की एलर्जी से होता है। और बहुत बार स्किन ड्राई होने की वजह से बच्चों में भी पिट्रेसिस अल्बा, एक मतलब एक कंडीशन होती है जो ड्राई स्किन के कारण होता है, या बरसाती घाव भी बहुत सा जल्दी बच्चे लोग को डेवलप कर जाता है, पायोडर्मा हम लोग बोलते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो ये सारे बच्चों में भी पाया जाता है, तो उसका सिंपल सेफ है, थोड़ा बच्चों को बचाए, बच्चा जिद करता ही है, लेकिन फिर भी उसको बचाए कि ज्यादा बारिश में नहीं भींगे। मच्छर से बचने के लिए फुल उसे कॉटन कपड़ा, सूती कपड़ा फुल बाही पहनाए।
0: अच्छा।
1: तो वो मच्छर से ही बचाएगा। रात में आजकल सब कोई ऑल आउट ये लगाते हैं, बट दिन में जब बच्चा खेलता है उस समय उसको मच्छर काटता है, उसके चलते भी ये प्रॉब्लम होती है। तो फुल स्लीव्स करके बचाएं, थोड़ा बरसात में स्पेशल ध्यान रखें बच्चों का।
0: डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। अंत में हम ये कहेंगे आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ विशेष सुझाव, कुछ सलाह इस मौसम में देंगे।
1: जी जरूर, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, बारिश बहुत अच्छी मौसम है, आप उसे एंजॉय करें, लेकिन बारिश में भींग के नहीं, बारिश से बच के अपने को साफ रखे, सूखा रखे। गलती से बारिश में भींग भी गए तो जैसा मैंने बताया, पोंछ के उसे सूखा रखे, कपड़े बराबर आयरन करें, बच्चों को बचाएं, फुल स्लीव्स बच्चों को पहनाएं, और खुद भी प्रिकॉशन ले।
0: मतलब कहीं से गीलापन यदि हो रहा है तो उसको कैसे सुखा कर आप उसका प्रयोग करें, चाहे बच्चों के लिए चाहे खुद के लिए। और शरीर को साफ रखें, स्वच्छ

0: स्वच्छता तो हर समय जरूरी है और सूखापन रखें और तेल का प्रयोग,
1: नारियल तेल का प्रयोग करें।
0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हमें त्वचा संबंधी किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है और क्या समाधान है, इस विषय पर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोता साथी, आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। बरसात के मौसम में त्वचा की उचित देखभाल जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राजीव रंजन। हम आपको बता दें श्रोताओं, इस भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण किया गया।

श्रोता साथी, ग्रामीण आवास योजना जिसे आमतौर पर ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कहा जाता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके। ये योजना सिर्फ घर देने के उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि ये सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की दिशा में बड़ा कदम है, क्योंकि पक्का मकान से जीवन शैली सुधरती है और सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ती है। श्रोताओं, इस योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य के साथ, क्योंकि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का प्रत्येक व्यक्ति के का सर्वांगीण विकास हो। श्रोताओं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो पात्रता है वो है आश्रय विहीन परिवार, निराश्रित या भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले आदिम जनजातीय समूह, कानूनी तौर पर रिहा किया गया बंधुआ मजदूर। इस योजना के द्वारा महिला को भी सशक्त करने का प्रयास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओं कि इसमें हर व्यक्ति सीधे आवेदन नहीं कर सकता। लाभार्थी का चयन SECC 2011 और आवास प्लस सर्वे के आधार पर होता है। ग्राम पंचायत और सरकार मिलकर पात्र परिवारों की पहचान करते हैं और सबसे गरीब और बेघर परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

साथ साथ फिल्म में आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को, शब्दरचना जावेद अख्तर के, संगीत निर्देशन कुलदीप सिंह का। और श्रोताओं, इसी के साथ कल कारखाने का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त स्नेहलता को अनुमति। आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: कल कारखाने, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर शाम के 6 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरुण।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Dipendra Dwivedi, who superannuated after more than four decades of distinguished service to the nation. General Seth is an alumnus of the National Defence Academy, Pune, and was commissioned into the Armoured Corps in December 1986. He has a distinguished military career spanning nearly four decades. India has reaffirmed its strong support for the Financial Action Task Force, FATF, describing it as an indispensable pillar of the global fight against terrorism, financing and money laundering. The statement came after Pakistan criticized the task force following the neighboring country's placement on the organization's grey list for increased monitoring. Speaking at a UN event on the sidelines of the Counter-Terrorism Week, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said attempts to question FATF's credibility reflect fear of scrutiny rather than genuine concerns. On the occasion of Hul Diwas today, Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to Sidho Kanhu, Chand Bhairav, Phulo Jano and all the brave tribal warriors who stood firm against the injustice of foreign rule. In a social media post, Mr. Modi said that Hul Diwas is a powerful symbol of the extraordinary courage and unwavering spirit of tribal communities who laid down their lives for their motherland. Benchmark domestic equity indices ended the final trading session of the quarter around 4.3% lower today. The Sensex fell 250 points to close at 76,479, while the Nifty lost 81 points to settle at 23,866. However, the broader market on the National Stock Exchange ended in a positive territory. In the FIFA World Cup, Morocco and Paraguay have advanced to the round of 16. Morocco defeated Netherlands 3-2 on penalties after a thrilling 1-1 draw in Guadalupe, Mexico. Tonight, Ivory Coast will take on Norway in Texas, United States. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से. ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर. शाम के 6:10 हो रहे हैं. झारखंड के लोकगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में.
2: पुलिस
3: मिस सीमा
2: जी
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है. रुकिए वरना घर आ जाएंगे.
2: क्यों लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए. आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो.
2: डिजिटल अरेस्ट
3: 1,00,000 दो बच जाओगे.
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए. अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा.
2: जेल तो तुम जाओगे. तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है. डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता. ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें. पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें.
4: हेलो मम्मा.
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए.
1: ये आकाशवाणी जमशेदपुर है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज संध्या 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल. आंखों देखा हाल आप सुन सकेंगे श्रोताओं खेल की समाप्ति तक. ये आकाशवाणी जमशेदपुर है. श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत. आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नागपुरी लोकगीत. कलाकार हैं मेघनाथ महतो एवं साथी.
7: ये पर्यावरण गीत है जिसमें कहा जा रहा है धरती माता का श्रृंगार नदी झरने पहाड़ और पेड़ पौधे होते हैं जिसे प्रकृति भी कहते हैं. यहाँ इन्हीं पेड़ पौधों से वर्षा होती है, हमें शुद्ध हवा मिलती है, फल फूल और जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। इसे हमें सुरक्षित रखना है ताकि आने वाले दिनों में संकटों से हम बचे रहें। इस नागपुरी लोकगीत में स्वर है मेघनाथ महतो और साथियों का।

कि इस गीत में कहा जा रहा है, कर्म पर्व के समय महिलाएं खुशी खुशी अपनी पसंद की साड़ियां, चूड़ियां और श्रृंगार के सभी सामान खरीदती हैं और 5-7 दिनों तक उपवास व्रत रखकर कर्म देवता की पूजा अर्चना करती हैं। प्रसाद के रूप में चना, खीरा, जावा चढ़ाती हैं, फिर अखड़ा में नाच गान करते हुए झूमर खेलती हैं। आइए सुने मेघनाथ महतो और साथियों का गाया हुआ ये नागपुरी लोक गीत।

0: मेघनाथ महतो और साथियों के स्वरों में नागपुरी लोकगीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। इसके साथ ही आज का झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से, संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका

0: नियुक्ताः सन्ति। मेघालय राज्ये च ईस्ट खासी हिल्स जनपदस्य उपायुक्तः अभिलाष वरणवालः सूचितवान् यत् बीएलओ अधिकारिणः जनपदे स्थितेषु सर्वेषु एकविंशत्युत्तरैकसहस्र मतदान केन्द्रेषु गत्वा तेभ्यः मतदातृभ्यः प्रपत्राणि वितरिष्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामी द्विदिवसेषु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवाषु अतिवृष्टेः कृते नारंगी वर्णीया संचेतना प्रकटिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, माहे, उपहिमालयी, पश्चिम बंगालस्य च भागेषु संभाव्यन्ते। अपरपक्षे विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादिषु राज्येषु उष्ण तरंगस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर न्यगादीत यत् भारतेन षड्विंशतितोप्यधिक देशैः सह अष्टाविंशति प्रवासन गतिशीलता सहभागिता सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। तेन अवैध प्रवासं, शोषणात्मक प्रथाः, कपटपूर्त मध्यस्थतां च प्रतिरोद्धुं राष्ट्राणां सामूहिक उत्तरदायित्वं प्रति विशेषरूपेण उपादिष्टम्। हूल दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश शासनस्य न्यायस्य विरुद्धं दृढतया समुपस्थितेभ्यः सिंधो काहू, चंद भैरव, फुलो झानू इत्यादिभ्यः सहैव सर्वेभ्यः वीर जनजातीय जनेभ्यः भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को पैराग्वे देशौ राउंड ऑफ 16 चरणे स्वस्थानं सुरक्षितवन्तौ। मैक्सिको देशस्य ग्वाडालूप नगरे आयोजिते रमणीये द्वन्द्वे मोरक्को दलेन नीदरलैंड दलं 3-2 इत्यंकैः पराजितम्। अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सास प्रान्ते आइवरी कोस्ट तथा नॉर्वे इत्यनयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: संस्कृत में समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र

एफएम के 100.8 MHz पर यह आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं प्रिया, नमस्कार। श्रोताओं, आज हूल दिवस है। झारखंड में हर साल 30 जून को मनाया जाने वाला यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिन 1855 के ब्रिटिश शासन और शोषक जमींदारों के खिलाफ हुए संथाल विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू नाम के दो भाइयों ने किया था। बहन फूलो और झानू के साथ साथ अन्य सभी लोगों ने भी इनका साथ दिया था। यह दिवस आदिवासी समाज द्वारा किए गए संघर्ष, साहस और हजारों आदिवासियों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आगाज करते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

उदित नारायण, मास्टर विघ्नेश, बीवी पूजा और साथियों के स्वर में आपने सुना स्वदेश फिल्म का गाना। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत ए आर रहमान का था। श्रोताओं

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एयरलिफ्ट फिल्म का गाना अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ में। रचना कुमार की है, संगीत अमाल मलिक का।

एयरलिफ्ट फिल्म का गाना भी आपने सुना अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं, FM के 100.8 MHz पर यह आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे

0: बॉल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बुधवार को स्पेशल जयमाला कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में आपने सुना टैंगो चार्ली फिल्म का गाना। गीतकार थे आनंद राजानंद और संगीत अनु मलिक का था। आर्यन, जी हाँ दोस्तों, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने सुना आर्यन फिल्म का गाना। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का था। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। श्रोताओं, FM के 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कार्यक्रम जयमाला का प्रसारण होगा 7:10 पर और 7:45 का समय रहेगा कार्यक्रम इंद्रधनुष का। हवा महल रात 8 बजे और कार्यक्रम चित्रलोक 8:15 पर। समाचार संध्या 8:45 पर और रात्रि 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 का समय रहेगा आज के फनकार का और छाया गीत रात 10 बजे। और अब समय हो चला है प्रादेशिक समाचार का।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। राज्य में शुरू हुआ SIR अभियान। 2,64,00,000 से अधिक वोटरों को अद्यतन करने के लिए घर घर जाएंगे 31,000 से ज्यादा BLO। ऐतिहासिक हुल दिवस पर पूरे राज्य में अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरों के त्याग को किया नमन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने सरकार को बताया विफल। झामुमो ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और नासिक राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने गाड़े सफलता के झंडे। 4 स्वर्ण समेत जीते कुल 9 पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का आज से आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग के आला अधिकारी खुद मैदान में उतरकर इसकी लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: झारखंड निर्वाचन आयोग इस समय पूरी तरह अलर्ट मोड में है। राज्य भर में SIR अभियान का शंखनाद हो चुका है। पहले ही दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी के तोरपा का दौरा कर BLO के साथ समीक्षा बैठक की। प्रशासनिक मुस्तैदी का ये दौर कई जिलों में दिखा। गढ़वा में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्र ने 29 जुलाई तक चलने वाले इन्यूमिरेशन फॉर्म वितरण की शुरुआत की। सरायकेला खरसावा में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की। तो वहीं लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार और SP सादिक अनवर ने बूथों का औचक निरीक्षण किया। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान को गति देने के लिए रामगढ़ जिले में #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बार BLO ऐप के माध्यम से डिजिटल एंट्री पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में प्रेस वार्ता में बताया कि वर्तमान में राज्य में 2,64,63,236 पंजीकृत मतदाता हैं। इस अभियान के लिए कुल 31,892 BLO को लगाया गया है जो घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दावा किया कि इस प्रक्रिया में एक भी पात्र वोटर नहीं छूटेगा।
3: 82.10% मैपिंग हुई। अभी एनुमरेशन प्रोसेस में भी वो मैपिंग का कुछ का छूट गया, मतलब उसका मैपिंग भी कर सकते हैं। कितना मैपिंग हुआ उसका भी 2 स्टेज का वेरिफिकेशन भी होगा। इसलिए मैपिंग का कुछ यहाँ पर मैं भी फील्ड में जाकर देखा था, उसमें कुछ यहाँ पर बाकी है, कुछ यहाँ पर गलत। इसलिए 2 स्टेज में वेरिफिकेशन होगा, वो प्रक्रिया शुरू हो गया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुल दिवस के अवसर पर विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष करने वाले सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि हुल दिवस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और अटूट भावना का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनके संघर्ष और बलिदान की गाथा देशवासियों को नई ऊर्जा प्रदान करती रहेगी और प्रेरित करती रहेगी। झारखंड में आज ऐतिहासिक हुल दिवस के मौके पर अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू को पूरे राज्य में श्रद्धा पूर्वक नमन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनका संघर्ष हमेशा समाज को प्रेरणा देता रहेगा।
4: जब देश में आदिवासी समुदाय के लोग शोषण का शिकार हो रहे थे, ये लोग कैसे उस शोषण से बाहर निकले इसकी रणनीति बना रहे थे। अंतोगत्वा उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूका। और आज हमें गर्व है कि आज इन वीर सपूतों के बदौलत झारखंड को एक वीर भूमि भी हम कहते हैं और उनके सम्मान में उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
1: इधर हुल की ऐतिहासिक धरती भोगनाडीह को लेकर सियासत भी गरमाई रही, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भोगनाडीह में सुरक्षा प्रतिबंधों और ग्रामीणों से बॉन्ड भरवाए जाने को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।
5: ये सरकार इस लड़ाई का इतिहास को मिटाना चाहती है। ये गठबंधन सरकार आए जेएमएम कांग्रेस आदि की, अरे जिस मट्टी से, जिस गांव से स्वतंत्रता का बिगुल बजा, क्रांति का बिगुल बजा, आज उस गांव को स्वतंत्र नहीं है।
1: इधर भारतीय जनता पार्टी ने आज हुल दिवस के मौके पर रांची सहित राज्य के सभी मंडलों में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने वीरों को नमन किया। हजारीबाग में आज हुल दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा और राज्यसभा सांसद पी संतोष ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए रणनीति साझा करते हुए राज्य की 7 लोकसभा और 30 से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमशेदपुर में विधायक पूर्णिमा साहू और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ हैं और शासन पूरी तरह विफल है।
6: मानसु का हत्या जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। झारखंड के पुलिस के वैन से निकाल करके अपराधियों के द्वारा बीच सड़क पर चाकू से गोद गोद करके मार, आप समझ सकते हैं जमशेदपुर जो शांति प्रिय जिला के रूप में जाना जाता था, आज जमशेदपुर का ये हालत है, तो झारखंड के बाकी जिलों का क्या हाल है।
1: इधर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए झामुमो नेत्री और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि विपक्ष आगामी चुनावों को देखते हुए बेबुनियाद बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार में पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है।
7: भाजपा के यहाँ ये स्वभाव है आरोप लगाना। अभी हाल के दिनों की बात करती हूँ, रांची में जब आरएसएस कार्यालय में हमला हुआ तो कितनी जल्दी पुलिस ने हमलावर को पकड़ा, जो कि शायद भाजपा के कार्यकाल में ऐसा कभी इतनी जल्दी इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उसी तरह से हर मामले में यहाँ की पुलिस लगातार सक्रिय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल कोताही न बरती जाए।
1: राज्य को कल 4 नए सूचना आयुक्त मिलने जा रहे हैं। लोक भवन के दरबार हॉल में सुबह 11:30 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सभी नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाएंगे। कार्मिक विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति

0: द्वारा 16 नेक नागरिकों को सम्मानित किया गया। चाईबासा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इन गुड समैरिटन्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इन नागरिकों ने सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को गोल्डन आवर के दौरान अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। समिति ने अब हर महीने ऐसे 5 नेक नागरिकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रांची, लातेहार, लोहरदगा और खूंटी सहित कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार 1 और 2 जुलाई को राज्य भर में भारी बारिश का दायरा और बढ़ेगा। खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। स्वर्ण पदक विजेताओं में इटाशा कपूर, अनाया खलखो, विशाखा थापा और पलक साहू शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में शुरू हुआ SIR अभियान। 2,64,00,000 से अधिक वोटरों को अद्यतन करने के लिए घर घर जाएंगे 31,000 से ज्यादा BLO। ऐतिहासिक होल दिवस पर पूरे राज्य में अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरों के त्याग को किया नमन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने सरकार को बताया विफल। झामुमो ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और नासिक राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने गाड़े सफलता के झंडे। 4 स्वर्ण समेत जीते कुल 9 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM के 100.8 MHz पर यह आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे जयमाला आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल।

0: सेना स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।
1: रोजाना भूले बिसरे गीत के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं केके और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का। फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है
1: और तूफान की तरह चली जाती है।
2: आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौन रही
1: है? अरे बिजली बिजली कहाँ कौन थी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना की बहुत मजा आया।
2: तू इतना ही जान कर रुक जा,
1: नहीं तो
2: नहीं तो नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
1: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी। बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, पर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
2: राजा? कौन राजा?
1: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
2: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
1: ओह लड़का, कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
2: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
1: अपने राजा के। ओ मंजू, हाउ ही लव्स मी।
2: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
1: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बाढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
2: ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है?
1: अरे मंजू जी जी, उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
2: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
1: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
2: दीपक? कौन दीपक?
1: हाँ वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू, वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है बस।
2: सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
1: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
2: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हसोड़ सा था।
1: अब मैंने गोरा गोरा लंबा उम्बा हसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
2: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
1: थी? नहीं, आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ, हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
2: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है, आता है तीज त्योहार पर।
1: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय।
2: कर दिया
3: भाभी, भाभी।

0: भाभी वो मतलब मतलब भाभी वो आपकी बहन है ना, उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
0: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
0: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
0: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
0: नहीं मतलब हाँ मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाहा कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई, चल कुछ कहेगा भी?
0: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
0: कहूं? कह दूं भाभी? भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया
1: भाभी। अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
0: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहीं के, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील राजा ने कहा से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं थी, छोड़ उसका ख्याल।
0: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा, इतनी कोमल गंभीर था, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
1: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
0: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
0: ओ भाभी शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
0: क्या? हा?
1: मैं शील को बुलाती हूँ और सुन, उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने।
0: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
0: अच्छा
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू दादा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
0: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है। मैं तो छुपे जाने।
0: तुम छुप जाओ भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक।
0: जी जानता हूँ। जी जी मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कह।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने।

0: पसंद आया?
1: क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते।
0: शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी, क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज, शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ। शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब I love you।
1: लेकिन क्यों?
0: क्यों? क्यों क्या? राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं।
0: पता नहीं? तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो?
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है? लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अब वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
0: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए।
0: ओह माय गॉड, ये राजा इनका महबूब। सच में शील जी, ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे फाड़ गया।
1: राजा राजा बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
0: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
1: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं कर?
0: कभी नहीं, कभी नहीं, तुम मेरे महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
2: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी, निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: रोजाना भूले बिसरे गीत के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान, श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग कर रहा था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। बुधवार को स्पेशल जयमाला कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री। रोजाना छाया गीत के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का। फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है A.M. तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है A.M. तुरास ने।

साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी

0: यानी ईओसीआई कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और एफसीआरए पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई ईओसीआई व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
6: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5

0: अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवोप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं

0: में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शवांद रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में। जो

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीरजी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे। जरा ठहरो।

0: हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें देके जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी ओजी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही समाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलती हुई रात से गुफ्तगु, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।